अड़िया लोक मार दे ताने वे, जो सी पीड़ पराई असी अपने तन ते ला बैठे। तेरी खातर सजना असी जग नाल मत्था ला बैठे। छोटी उम्रे अखियां लाइया लगे रोग अवले, मीडिया खुल के गले च लटकन लोक आख दे चले। तेरे तीर ही जर दे सजना, तेरे तीर ही जर दे सजना, असी अपने सीने खा बैठे। तू कि दर्द नू जाने, असी बहुता दर्द हंडा बैठे। जिस किसे

चुप चाप पई दिसी एक पक्षी सी, माने बोये कोल सांब के जो रखी सी। पखे बिजली देने पैरां विच रोलिया संदूक।

सब दरिया खेस कब राए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी। गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

होई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई, जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की, पटोलियां दी खेड मुक्की, वीरां संग रोक मनाई।

मिट्टी मेरी माँ। जो मिट्टी नाल पांडा बनदा तू मिट्टी दा पूरा, कदे मान करी ना किसे चीज दा रहना सदा धोरा। तू

तू विस फोटे कट्ठे कर ले, अपनी झूठी शान दिखा तर बेसमेंट सब भर ले। रजनीये नू पता नहीं लगना, रजनीये

एहसास करो ओ मेरी माँ है कंबदी। जद हवा चलेगी ठंडी तन नो चंबदी। एहसास

0: स्टेज दे उपर आके काफी सारी जिहड़ियां चीजां ध्यान देण वालियां ने कि असीं जदों बच्चे चोण करदे आ कि उन्हां ने केड़ा विशा लेना है
1: हाँ
0: या
1: जी
0: फिर उस तो बाद वो केड़े कोर्स दे विच जाना चाहुंदे हन या फिर उस तो बाद नेक्स्ट जिहड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि वो केड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज या फिर इंस्टीट्यूट दे विच एडमिशन लेणगे।
1: बिल्कुल जी
0: ये सारी ही चोन उन्हां दे पूरी लाइफ नू बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इत्थे
1: हाँ जी
0: कि उन्हां दी सारा जो फ्यूचर है वो सारा ही इस चोन दे उपर खड़ा हुंदा है कि वो केड़ा डिप्लोमा या डिग्री जे विच एडमिशन लेणगे और उस तो बाद वो केड़े कॉलेज या यूनिवर्सिटी दे विच पढ़नगे।
1: ठीक है जी
0: मोस्टली जिहड़े साडे बच्चे हैं वो कोशिश ये करते हैं कि असी जिहड़ा विशा है कुछ आसान जा विशा चूज करिए या फिर कुछ ऐसा चूज करिए जिहड़ा कि असी जिहदे विच असी स्कोर ज्यादा लै सकीए।
1: हाँ जी
0: बच्चे अक्सर ये सोचते हैं कि असी स्कोरिंग सब्जेक्ट्स लईए ताकि असी 90% 99% जो बच्चे बहुत ही ज्यादा कंसर्न रखते हैं अपने फ्यूचर नाल तो अक्सर ये चीजां नूं सोच के ही अपने विषय चूज करते हैं कि असी उही विषय लईए जिन्हां चो साडे स्कोर्स ज्यादा आंदे हैं।
1: बिल्कुल जी
0: तां एक तां ये चीज थोड़ी जी मतलब इस नूं आपां थोड़ी रोंग अप्रोच कह सकते हैं
1: हाँ जी
0: क्योंकि सिर्फ एक स्कोरिंग दे लई असी सब्जेक्ट चूज करांगे तां वो ज्यादा कोई मैटर नहीं करूंगा। ज्यादा मैटर ये करता है कि केड़ा जो सब्जेक्ट है तुहानू इंटरेस्टिंग लगता है केड़े
1: हाँ जी
0: सब्जेक्ट दे विच जाके तुसी एक अच्छा फ्यूचर जो है उसका निर्माण कर सकते हो
1: बिल्कुल जी
0: ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है।
1: हाँ जी
0: तां हुण इस जगह ते असी बच्चियां नू यही मैं कहना चाहूंगी कि वो हमेशा ये देख के ही विषय दी चोन करन कि उहनां दे लई जिहड़ा विशा बहुत ज्यादा उहनां नू लगदा है कि हाँ इंटरेस्टिंग है बहुत मजा आ रहा है उहनू पढ़ के
1: हाँ जी
0: तां उस विषय नाल रिलेटेड जिहड़ियां स्ट्रीम्स निकलदियां ने अगों दी अगों। ठीक
1: हाँ
0: है
1: जी
0: फॉर एग्जाम्पल तुसी फिजिकल एजुकेशन नू लै लो अगर बच्चे नू लगदा है कि मैनू फिजिकल एजुकेशन पढ़ना अच्छा लगदा है या फिर फिजिकल एक्टिविटीज च पार्टिसिपेट करना अच्छा लगता है तां उहो फिजिकल एजुकेशन दे नाल रिलेटेड जिहड़े फील्ड निकलदे आ डिप्लोमास या डिग्रीज निकलदियां ने उहनां च एडमिशन लै सकते हैं ताकि उहनां दा फ्यूचर भी सिक्योर हो सके प्लस उहनां दा जो इंटरेस्ट है वो
1: हाँ जी
0: भी फुलफिल हो जावे है
1: बिल्कुल
0: ना।
1: जी
0: तां ये चीज होगी। नेक्स्ट दूसरी चीज जिहड़ी सानूं ध्यान रखने वाली है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिदे वल मोस्टली बच्चे ध्यान नहीं देंदे हैगे
1: हाँ जी
0: वो है साडे इंस्टीट्यूट कॉलेज या यूनिवर्सिटी दी सिलेक्शन करना।
1: हाँ जी हाँ जी
0: बच्चे की करते हैं विद्यार्थी की करते हैं वो अक्सर ये सोचते हैं कि जो सानू अप्रोचेबल है जो साडे पिंड तो या फिर साडे शहर तो बड़ा नेड़े जे पैंदा है सानू कॉलेज असी उत्थे ही एडमिशन लै लैने हां। स्पेशली गर्ल्स जिहड़ियां ने वो काफी ऐसियां गर्ल्स मैनू मेरे काउंसलिंग प्रोफेशन च काफी ऐसियां गर्ल्स मेरे नाल मैनू मिलन मिलियां ने जिहड़ियां कि कह दिंदियां ने कि मैडम असीं करना तो ये चीज चाहुंदे हां
1: ठीक
0: बट
1: है जी
0: साडे जो पेरेंट्स है वो सानू बाहर पढ़ा नहीं सकदे इस करके असीं कोई होर विशा चूज कर लिया। तां
1: अच्छा
0: ये
1: जी
0: भी बड़ी दिक्कत दी गल है कि साडे जो बच्चियां नू फेस हुंदी है कि वो करना कुछ होर चाहुंदे हैं करना लाइक वो LLB करना चाहुंदे हैं
1: हाँ जी
0: बट वो उन्हां दे शहर दे लागे किसे पिंड या किसे कॉलेज दे विच नहीं है तां
1: बिल्कुल
0: फिर वो उस नू छड़ दिंदे हैं ना कि वो थोड़ा रिस्क लैण दी बजाय या फिर वो अपने पेरेंट्स को कन्विंस करन दी बजाय वो छड़ के कोई होर कोर्स विच या फिर सिंपल BA दे विच एडमिशन लै लैंदे हैं। तां
1: ठीक है
0: ये जो इंस्टीट्यूट दी चोण है ये भी साडे लई बहुत ही एक इंपॉर्टेंट मुद्दा है। मेरे ख्याल दे विच इस दे उपर भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। सानू अपने कॉलेज और यूनिवर्सिटी की चोन बहुत ही ध्यान नाल करनी चाहिए है
1: हाँ जी
0: उसकी
1: हाँ जी
0: रैंकिंग नू देख
1: महत्वपूर्ण
0: के
1: है
0: उस दे विच की सक्सेस रेट है उत्थों दे जिहड़े स्टूडेंट्स ने वो कित्थे की कर रहे हैं उस तो बाद मतलब वो सारी चीजां ये बेसिकली सारियां चीजां अजकल सुखबीर जी सानू इंटरनेट दे उपर अवेलेबल ने असी
1: ठीक
0: कुछ
1: है
0: भी
1: जी
0: देख सकते हैं इंटरनेट दे उपर सर्च करके किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज दा असी रिव्यू पढ़ सकते हैं।
1: बिल्कुल
0: सो
1: जी
0: ये दो चार चीजां ने अगर असी इन्हां दे उपर ध्यान दे लांगे 10वीं 12वीं वाले टाइम च तां साडी पूरी लाइफ जिहड़ी है वो ऑर्गेनाइज हो जाएगी
1: बिल्कुल जी
0: बिल्कुल अनुशासन दे विच चलेगा सारा साडा

ऐसे ही तो जरूरी है मीठे वचन, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। जुबां से जो दिल ही दुखाता रहे, उसका जीवन तो है एक शमशान का। आदमी तू अगर आदमी ना बना, तो ये जीवन भला है ये किस काम का। जिंदगी का सफर ये सुहाना बने,

खुश रहे जो सदा उसकी मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। खुश रहे जो सदा उसकी ही मौज में, दास सच्चा वही तो है भगवान का। तू सहारा अगर ना किसी का बना, तो ये जीवन तेरा बस।

चंद सितारे खुशियां कीड़े नहीं आए रास कदे। शीशे के खड़के जदवी चेता आया बीतदा बीत पल।

सब दरिया खेस घबराए सी, वेला बूटे माने चावा नाल पाए सी, गद्दे बैड देने पैरां च मदोलिया, संदूक मां दा जदों सी मैं खोलिया।

जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, जा सारे कर दिए ले जा लाडा परी विदाई, तेरिया लाडलियां पर।

जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। जगती रीत अवली अगे जोर नहीं चलिया कोई। पटोलियां दी खेड मुक्की पटोलियां दी खेड मुक्की वीरां संग रोक मनाई।